नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी

0: समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
4: India and Indonesia are very close and strategic partners.
5: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
4: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
2: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
6: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचार।

0: कर्मचारियों से वसूलेंगे पाई पाई। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट पीजी परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा। अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्ष में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो इन जकार्ता टुडे टू प्रोवाइड फ्रेश मोमेंटम टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
3: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by Samana Vaya group comprising Indonesian students. The Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Kulit shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the triple gem, Sri Ratna. Expressing gratitude to the Indian community, the Prime Minister said he was touched by the warm reception accorded to him in Jakarta. Prime Minister Modi received an enthusiastic welcome from the Indian diaspora upon his arrival at the hotel in Jakarta. India's ambassador to Indonesia, Sundeep Chakraborty, said major announcements expected across defense, maritime, security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
4: We will be doing a lot of understandings and agreements on several areas of cooperation. There will be cooperation announcements or agreements in five sectors. One would of course be defense and maritime security, then trade and investment, food security and fertilizer security, energy security, critical minerals, and of course

0: डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
3: Good morning Mumbai. समंदर की लहरों की ताजगी, लोकल ट्रेनों की रफ्तार और लाखों सपनों की आवाज के साथ आपका स्वागत है मस्त मुंबई में। मैं हूं आरजे रॉबिन और मस्त मुंबई में आज की हमारी थीम है कल आज और कल। हर शहर की एक कहानी होती है, लेकिन मुंबई की कहानी सबसे अलग है। एक ऐसा शहर जिसने बीते कल की विरासत को भी संभाल कर रखा है, आज की रफ्तार को भी अपनाया है और आने वाले कल के सपनों को भी अपने बाहों में जगह दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसने मुंबई को एक अलग पहचान दी है।

जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की।

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: जब सजते हैं सुरीले सांस तो खिल जाती है मन की कली,
2: यही डूबे दिल मेरे।
1: जगमगाता है ये दिल का शहर और धड़कनों की धुन पर थिरकते हैं अनजाने ख्वाब कई।
2: हाले दिल को सुकून चाहिए,
1: चल पड़ा है कारवां इन साजों का इस कदर, निखरने लगे हैं जिंदगी के रंग कई।
2: रंग दे गेरुआ।
1: आओ रूबरू हो जाए हम इस हसीन दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 107.1 FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: दोस्तों, समय हो रहा है 9 बजे और आप जुड़े हैं FM रेनबो 107.1 और मैं हूं आपका दोस्त RJ रॉबिन। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मुंबई में बारिश कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गई है। कहीं रिमझिम फुहारे तो कहीं तेज़ बारिश, और इसके साथ कई जगह पर जलभराव और ट्रैफिक की चुनौती भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर कोई शहर बारिश के साथ जीना जानता है तो वो है हमारी मुंबई। बारिश हो या धूप, यहाँ की रफ्तार, हौसला और मुस्कुराहट कभी नहीं रुकती। मुंबई की बारिश अपने साथ कितनी यादें भी लेकर आती है। कटिंग चाय की गर्माहट, सड़क किनारे भुट्टे की खुशबू, मरीन ड्राइव की लहरें और खिड़की के पास बैठकर बारिश को निहारने का अपना ही सुकून है। अगर आप इस वक्त सफ़र में हैं तो सुरक्षित रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए और इस खूबसूरत मौसम का आनंद लीजिए। चलिए अब इस बारिश के एहसास को संगीत के साथ और भी खास बनाते हैं।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: दोस्तों समय हो रहा है 9:15 और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रॉबिन। दोस्तों अगर मुंबई का नाम लिया जाए और फिल्मों की बात ना हो तो कहानी अधूरी लगती है। यहीं से शुरू हुए ऐसे कलाकार जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। एक समय था जब लोग सिनेमा देखने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे। तकनीक बदल गई, स्क्रीन बदल गई, लेकिन एक अच्छी कहानी और एक अच्छा संगीत आज भी लोगों के दिल तक उसी तरह पहुंचता है। पुराने दौर के गीत हो या आज की नई धुनें, दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है। चलिए कारवां आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कुछ और गाने।

0: प्यार।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई मेरे यानी आरजे रॉबिन के साथ। दोस्तों अगर मुंबई की पहचान गिनाए जाए तो लोकल ट्रेन, मरीन ड्राइव और बॉलीवुड के साथ एक नाम और आता है और वो है मुंबई के डब्बे वाले। सफ़ेद कुर्ता, गांधी टोपी, हाथ में टिफिन और लोकल ट्रेनों के सहारे बिना किसी आधुनिक तकनीक के। समय की ऐसी पाबंदी कि दुनिया की बड़ी बड़ी मैनेजमेंट संस्थाएं भी इनके काम करने के तरीके का अध्ययन करने लगीं। लेकिन समय बदला और चुनौतियाँ भी। कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड ऑफिस और ऑनलाइन फूड से, ऐप से बढ़ते चलन ने डब्बे वालों के काम को काफ़ी अफेक्ट किया है। पहले जहां रोज लाखों टिफिन पहुंचते थे, वहीं अब उनकी संख्या पहले जैसी नहीं रही। फिर भी हर सुबह हजारों डब्बे वाले उसी ईमानदारी और मुस्कान के साथ निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि मुंबई की एक विरासत है।

0: डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका

0: कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि मुंबई कभी सोती नहीं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह सिर्फ रात भर खुली रहने वाली सड़कें या चमकती रोशनी नहीं है। मुंबई का बंदरगाह, शेयर बाजार, अखबारों की प्रिंटिंग प्रेस, दूध की सप्लाई, मछली बाजार, लोकल ट्रेनों की तैयारी और हजारों लोगों की नाइट शिफ्ट, ये सब रात के समय भी लगातार चलते रहते हैं। जब एक शहर सो रहा होता है, तब मुंबई का एक बड़ा हिस्सा अगले दिन की तैयारी में जुटा होता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि मुंबई सिर्फ जागती नहीं बल्कि हर पल आगे बढ़ती रहती है। और इस जज्बे को सलाम करते हुए सुनते हैं अगला शानदार गीत।

दोस्तों, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने हमें व्हाट्सएप किया है। संजय पाटिल जी नमस्कार कर रहे हैं, आपको भी नमस्कार। पंकज महोड़ जी ने भी काफ़ी सारे बातें की हैं, जो जो हमने गाने प्ले किए उनके बारे में उन्होंने बोला, उनको बहुत गीत अच्छे लग रहे हैं। सो थैंक यू पंकज जी। देन स्नेहा वराली भी हमें की हैं, गुड मॉर्निंग बोल रही हैं। प्रमोद चिंचोलकर जी भी हमें कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, और बहुत बारिश हो रही है उनके जहाँ से वो हैं, अकोला से हैं वो, तो वहाँ भी बारिश हो रही है। उसके बाद प्रमोद जी भी हमें पुणे से हैं नमस्कार कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग। दत्तारे जी, महेश भोरा भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। राम प्रजापति जी ने अभी जस्ट गुड मॉर्निंग बोला है। महेश भटकर जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। अजय साखरे गुड मॉर्निंग। फिरोज़ सिकनपुरिया गुड मॉर्निंग। प्रणव जी नमस्ते बोल रहे हैं, आपको भी नमस्ते। तो चलिए, अब 10 बजे आप सुनेंगे समाचार, उसके बाद फिर हम दोबारा मिलेंगे आपसे हमारे अगले कार्यक्रम में।

दोस्तों समय हो रहा है 10:06 और आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं हमारा अगला प्रोग्राम जिसका नाम है नमस्ते भारत और आज का हमारा सेगमेंट है भारत हमको जान से प्यारा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन गीत के साथ।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: दोस्तों, समय हो रहा है 10:15 और आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत। दोस्तों, आज है 7 जुलाई, भारत के इतिहास की वो तारीख जैसे हर भारतीय गर्व और श्रद्धा के साथ याद करता है। साल 1999, कारगिल युद्ध के दौरान आज ही के दिन कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मनों से लोहा लेते हुए पॉइंट 4875 पर अपने साथियों की जान बचाते हुए मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनका साहस, नेतृत्व और अदम्य वीरता आज भी हर भारतीय दिल में जिंदा है। उनके अद्वितीय शौर्य और राष्ट्र के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें भारत में सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, हम सभी अपने अपने जीवन में अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं, कभी पढ़ाई, कभी नौकरी, कभी जिम्मेदारियां। ऐसे हर मुश्किल पल में अगर हम कैप्टन विक्रम बत्रा के साहस को याद रखें तो शायद कोई भी मंजिल दूर नहीं लगेगी। आइए उनके अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान को नमन करें, क्योंकि ऐसे वीरों की वजह से ही हम आज खुली हवा में अपने सपनों को जी पा रहे हैं।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं रखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

हमलावर इस दीवार से टकरा कर वापस जाते थे जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है

0: वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: दोस्तों नमस्ते भारत, सुन रहे हैं आप मेरे साथ आरजे रॉबिन। दोस्तों कहते हैं सबसे बड़ी संपत्ति वो होती है जिसे हम खरीद नहीं सकते, और कुदरत उससे भी बढ़कर एक अनमोल तोहफा है। कश्मीर की बर्फ से ढकी वादियां, लद्दाख के शांत पहाड़, मेघालय के झरने, केरल के बैकवाटर्स, कच्छ का सफेद रण और अंडमान के नीले समंदर, भारत का हर कोना अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। बस हमें ज़रूरत है उन नज़ारों को महसूस करने की और इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखने की। आइए अपनी इस कुदरती संपत्ति को सलाम करते हैं और आप सुनते हैं ऐसे गीत जिसमें सफ़र भी है, सुकून भी है और प्रकृति से जुड़ने का खूबसूरत एहसास भी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत और मैं हूं आरजे रॉबिन आपका दोस्त। दोस्तों कुछ खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाते हैं और कुछ अपने अंदाज से इतिहास। मैदान पर शांत, फैसलों में सटीक और दबाव में भी हमेशा कूल, यही पहचान है महेंद्र सिंह धोनी की। आज उनका जन्मदिन पर सलाम उस कप्तान को जिसने हमें भरोसा करना सिखाया कि आखिरी गेंद तक मैच पलट सकता है। आइए उनके सफर और जज्बे को सलाम करते हुए सुनते हैं ये शानदार गीत।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना कुछ कहे ही मूड अच्छा कर देती हैं, जैसे बारिश की पहली बूंदे, अपनों की मुस्कान। क्या आप गैस कर सकते हैं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? जी बिल्कुल सही गैस किया, वो है चॉकलेट। आज है वर्ल्ड चॉकलेट डे। कहते हैं जिंदगी में अगर थोड़ी सी मिठास हो तो हर दिन खास बन जाता है, बिल्कुल चॉकलेट की तरह। तो क्यों ना इस दिन को थोड़ा और मीठा बनाया जाए। अपने किसी खास इंसान को चॉकलेट गिफ्ट कीजिए, या फिर खुद को ही एक छोटी सी ट्रीट दीजिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने का सबसे मीठा बहाना आज ही तो है। और अब इस मीठे एहसास के साथ सुनते हैं कुछ शानदार गाने।

दोस्तों, मैं देख रहा हूँ और भी कुछ लोगों ने हमें किए हैं व्हाट्सएप पे मैसेज। महेश भोरा जी ने भी लिखा है, रॉक एंड रोल दिवस भी मना जाता है आज, वो कह रहे हैं क्या बात है। देन प्रणव शिंदे जी ने काफ़ी सारे भेजे हैं, चॉकलेट भेजे हैं मुझे, थैंक यू सो मच। देन पंकज महोर जी को काफ़ी अच्छे लगे सारे गाने, विजेंद्र घटोल जी को भी अच्छे लगे, नमस्ते कह रहे हैं, मैं भी उनको नमस्ते बोलता हूँ। देन महेश भाटकर जी, श्रीधर मुरजकर, एन एम पाटिल कुरला से, गुलाब गायकवाड़, शुभदा जी गुड मॉर्निंग बोल रही हैं आपको भी, गुड मॉर्निंग। ओंकार कटकर पंडरपुर से, रियासत हुसैन जी हैं जसपुर उत्तराखंड से। तो ठीक है, फिर अब मेरा जाने का वक्त आ रहा है और अभी आपसे जुड़ेंगी आरजे वैशाली, जो बहुत सारे गाने, बहुत सारी मस्ती लेके आएंगी। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो और जुड़े रहिए हमारे साथ। और आखिरी गाना जो आ रहा है उसका नाम है आखिर तुम्हें आना है। ज़रा देर लगेगी लेकिन मैं आपसे बहुत जल्दी दोबारा मिलूँगा। ओके, ठीक है, टेक केयर एंड बाय।

0: ऐ मेरी हमराज, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र से 107.1 एफएम रेनबो और अब वक्त हो चुका है इस घंटे के मुख्य समाचारों का। मुंबई और ठाणे में आज सुबह से बारिश कम हुई है। मुंबई और कुछ तटीय जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश जारी है। मंगलवार के लिए पालघर जिला, नासिक व पुणे के घाट इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हाई अलर्ट पर है। अलर्ट के बाद मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों के साथ साथ नासिक, सातारा और पुणे के संवेदनशील घाट इलाकों में आज स्कूल और

0: कॉलेज बंद रहेंगे। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेंगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है और मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मुख्य समाचारों में आगे, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने इस्लामाबाद सरकार को 48 घंटे की समय सीमा दी है और धमकी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को वे कड़ा और निर्णायक जवाब देंगे। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती। मुख्य समाचारों के अंत में, फुटबॉल में बेल्जियम ने सियाटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। चार्ल्स डी कैटलेरे के शुरुआती 2 गोल और हैंस वनाकेन के तीसरे गोल ने बेल्जियम को मजबूत बढ़त दिलाई। रोमेलू लुकाकू ने आखिरी क्षण में अंतिम गोल किया। दूसरी ओर पहले हाफ में अमेरिका के लिए मलिक टिलमैन ने एकमात्र गोल किया। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजलीस स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। ब्रेक फ्री के लिए बने रहें 107.1 FM रेनबो पर।
1: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
0: आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और FM पर आकाशवाणी मुंबई केंद्र का 107.1 MHz पर FM रेनबो। और FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, बड़े शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर ऐसा लगता है ना कि काश बनावटी मुखौटों से हटकर उनको हटाकर सीधे सच्ची बात करने वाला, दिल से जुड़ने वाला, हम पर जान छिड़कने वाला एक खास दोस्त हो, एक सच्चा प्यार हो। पर आजकल जैसा माहौल बना हुआ है ना, उस वजह से रिश्ते तो वैसे ही नाजुक होते ही हैं। अब उनसे कई लोगों को डर भी लगने लगा है, खासकर जिनका कोई नहीं है लाइफ में अब तक। पर चाहते हैं ना वो कि कोई ना कोई लाइफ में आए, तो भाई वो लोग थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि जो हादसे हो रहे हैं आसपास, जो बातें चल रही है, जो धोखाधड़ी हो रही है, तो बस दिल में एक डर सा बैठ गया है। अक्सर मन में ये सवाल उठता है कि कैसे पहचानूं कि कौन सा रिश्ता सच्चा है और कौन सा सिर्फ दिखावा। तो चलिए आज मोह माया के कंफ्यूजन से ब्रेक फ्री करके दिमाग पर जोर डालते हैं और इस सवाल के जवाब हम सभी मिलकर ढूंढते हैं। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स। मैं हूं वैशाली और आप सभी के साथ बनी रहूंगी दोपहर के 2 बजे तक।

ब्रेक फ्री चल रहा है और आप सभी से मैंने कहा ना कि हम चलिए लाइफ के कंफ्यूजन को दूर करते हैं, उससे ब्रेक फ्री होते हैं और दिमाग पर जोर डालते हैं कि भाई ये जो सवाल है जो कई लोगों को है, जिनकी जिंदगी में कोई नहीं है और वो चाहते हैं उनकी लाइफ में कोई आए, तो कैसे भाई ये सुनिश्चित करें कि जो आपके साथ है वो दिल से जुड़ा हुआ है और ना कि आपके साथ किसी फेक रिलेशनशिप में है। आजकल की पूरी पीढ़ी दोस्तों सोशल मीडिया के फॉलोअर्स और लाइक्स के बीच असली और नकली रिश्तों का फर्क भूलती जा रही है। आप असली और नकली का अंतर समझ पाना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है ना, ऐसा लगता है। पर एक बहुत बेसिक सी बात है, गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान से अपने आसपास के लोगों को देखिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ तब प्रकट होते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, चाहे वो नोट्स मांगना हो, कोई काम निकलवाना हो या अपने अकेलेपन को भरने के लिए किसी का कंधा चाहिए हो। और कुछ लोग होते हैं ना जो टैगलोंग्स होते हैं, जो बिना बात के बिना इनविटेशन के आपके साथ साथ चल पड़ते हैं, बिना सोचे कि भाई आप चाहते हो या नहीं। लेकिन जब आपको लगने लगता है कि नहीं ये मेरा सच्चा दोस्त है, तब वो कहीं नहीं दिखते आपके लिए। भाई जैसे ही उनका काम पूरा होता है वो गायब हो जाते हैं। तो याद रखिए, जो रिश्ता सिर्फ जरूरत की बुनियाद पर टिका हो वो रिश्ता नहीं, एक सौदा होता है। सच्चा इंसान आपसे बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ आपका हाल जानने के लिए जुड़ेगा। हाँ, ये पहली निशानी है। वो फिर कोई सच्चा इंसान हो, सच्चा दोस्त हो। और सच्चे प्यार की अगर बात कहूँ ना, तो वो इससे कई ज्यादा गहरी बात है। सिर्फ दोस्ती नहीं, एक खास दोस्ती से होते हुए वो दिल में, दिल की गहराई में समा जाती है, वो सच्चा प्यार होता है। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प.
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू.
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ.
0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
4: ब्रेक फ्री चल रहा है 107.1 FM रेनबो पर और बातें कर रहे हैं हम सच्चे लोगों की, यानी कि वो फिर सच्चा दोस्त हो या फिर चाहे सच्चा प्यार का रिश्ता. आजकल बहुत लोग डरे हुए हैं इन दिनों, खास करके क्योंकि ऐसे केसेस, क्रिमिनल केसेस सामने आ रहे हैं, तो इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किस पर भरोसा करे, यानी कि कौन सच्चा है.

कौन झूठा है, कौन दोगला है, कौन अपने मतलब से हमसे जुड़ा है और कौन है जो वाकई दिल से जुड़ा और कभी भी हम पर किसी तरह का हमला नहीं करेगा, आँच नहीं आने देगा। तो दोस्तों इसी पर बात हो रही है और आपके क्या विचार है ये भी मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी। और मैंने कहा ही था कि चलिए साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो बहुत जल्द मैं आपके आपकी बातें देखने वाली हूँ और पढ़ने वाली हूँ। दोस्तों मैं यही कहूंगी आप सभी से कि दुख में तो शायद लोग तरस खाकर आपके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन आपकी खुशी में बिना किसी जलन के शामिल होना सबके बस की बात नहीं होती। जब आपको कोई बड़ी कामयाबी मिलती है, कोई इंटर्नशिप मिलती है, या आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, नौकरी मिल जाती है, कुछ अच्छा होता है आपके साथ, तब सामने वाले की आंखों में देखिए। एक सच्चा दोस्त या सच्चा पार्टनर आपकी तरक्की पर आपसे ज्यादा खुश होगा, वहीं एक नकली इंसान ऊपर ऊपर से आपको बधाई देगा, आपको पूछेगा अरे भाई कैसे मिली और क्या क्या हुआ, सारी जानकारी ले लेगा आपसे, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा तंज होगा या किस्मत का खेल जैसी कड़वाहट साफ महसूस होगी आपको। जैसे कहते ना कि भाई अंगूर खट्टे होते हैं, तो उस तरह का एक रिएक्शन के भाई इसको कहाँ से मिल गया, भाई ये कब से इतना काबिल बन गया कि इसे ये चीज हासिल हुई। फिर वो कोई आपके लाइफ में कोई अच्छी सुखद घटना ही क्यों ना हो, जैसे कि सगाई हो जाना या शादी तय हो जाना, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो इंसान है ये वाकई आपके बारे में क्या सोचता है। अगर आपका कोई एक्स भी है तो भी वो खुश होगा आपके लिए कि चलो आखिरकार आपको अपने मन पसंद यानी जो मन को पसंद है ऐसा कोई जीवन साथी आपको मिलने वाला है। ऐसी तमाम बातें होती हैं, ऐसे बहुत सारे साइलेंट क्लूज होते हैं जिन्हें मिस नहीं करना चाहिए, पता है, क्योंकि आपका मन जो है ना ये कितना भी पागल हो, बावरा हो, जो भी हो, ये आपसे झूठ नहीं कहेगा। कहीं ना कहीं आपका दिल जो है ना आपको बताएगा कि भाई कुछ गड़बड़ है। अपने दिल की बात सुनिए, बस उसे बावरा मत समझिए। हालांकि भाई मौसम ऐसा है कि थोड़ा सा पागलपन, थोड़ा सा बावलापन चल जाएगा, है ना। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

पाकिस्तान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
3: आप सुन रहे हैं 107.1 FM Rainbow। ब्रेक फ्री चल रहा है। मैं हूँ वैशाली। दोस्तों बात कर रहे हैं रिश्तों की, दोस्ती की, और कैसे पता करें कि रिश्ता जो है, दोस्ती जो है, ये सच्ची है या फिर किसी मतलब से। इसका जवाब कभी सीधा नहीं होता है ना? और लाइफ में कई सारी चीजें होती है जिनका जवाब अक्सर मिलता भी नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों असली रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है आपको क्या होता है? वो ये होती है कि वहां आपको हर वक्त खुद को साबित करना नहीं पड़ता। अगर आप किसी के साथ बिना कुछ बोले सिर्फ खामोशी में भी सहज महसूस करते हैं तो वो रिश्ता सच्चा है। नकली रिश्तों में एक अजीब सा तनाव होता है, आपको महसूस होता होगा, जहां आपको हर वक्त परफेक्ट दिखने का नाटक करना पड़ता है या किसी तरह का दिखावा। सच्चा इंसान जो होता है ना, आपकी कमियों को और आपके बुरे दौर के साथ आपको स्वीकार करता है, आपको बदलने की जिद नहीं करता और बस पुश

कर सकता है कभी कभी कि हाँ भाई ये कर लो वो कर लो, ये नहीं हो रहा लाइफ में, तो क्यों अटके पड़े हो, तो आपके लिए वो अस्वस्थ रह सकता है। लेकिन इसलिए नहीं कि उसको दुनिया जमाने को दिखाना है या कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि उसको वाकई आपके लिए बुरा लगता है, आपके लिए उसके दिल में दर्द उठता है। मैं जानती हूं कि आज के इस दौर में किसी पर भरोसा करना मुश्किल है, और धोखा खाने के बाद दिल में एक डर सा बैठ जाता है, पर इस डर की वजह से अपनी जिंदगी में प्यार और दोस्ती के आने वाले खूबसूरत रास्तों को बंद तो मत कीजिए। बस अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखिए। जो इंसान आपके साथ हर हाल में सीधा और साफ रहेगा वही आपका अपना होगा। पैनिक मत करना, जो आपका है वो वक्त आने पर आपको ढूंढ ही लेगा। उम्मीद करती हूं कि आपके जीवन में वो रियल कनेक्शन अगर नहीं है तो जल्द ही आ जाए। और हमारे आसपास कई सारी घटनाएं घटती रहती है, बस हमें उनसे सीख लेनी है, डरना नहीं है। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: फिसल गयो रे।
1: क्या बात है, आप मत फिसलना, चाहे बारिश की बात हो या प्यार की, हौले हौले धीरे धीरे आगे बढ़ना और सूझते बूझते जीवन में जो है हर काम करना। मैं हूँ वैशाली और बहुत जल्द यानी एक आखिरी गाने के बाद आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार, जिसके बाद होगा म्यूजिक कैफे शुरू। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 12:18 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरी सम्मान से नवाजा गया। मुंबई में लगातार चल रही बारिश के रुक जाने से बारिश से आज कुछ राहत मिली है और कल अस्त व्यस्त हुआ आम जनजीवन पटरी पर आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शहर में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसलिए एहतियात के तौर पर आज भी स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे। मुख्य समाचारों में आगे, सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के छठे जत्थे के तहत आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रिकॉर्ड 8,815 तीर्थ यात्री रवाना हुए। ये इस यात्रा सीजन में अब तक एक दिन में रवाना होने वाले तीर्थ यात्रियों की सबसे बड़ी संख्या है। 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा के पहले 4 दिनों में 86,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए हैं। मुख्य समाचारों के अंत में, थाईलैंड के पटाया में

0: आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते। महिला वर्ग में भारत ने 184 अंक के साथ उपविजेता का स्थान हासिल किया, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। म्यूजिक कैफे के लिए बने रहें 107.1 FM रेनबो पर।
1: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
0: आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और FM पर आकाशवाणी मुंबई केंद्र का 107.1 MHz पर FM रेनबो। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। मैं हूं वैशाली और आप सभी के लिए ले आई हूं म्यूजिक कैफे। दोस्तों, खिड़की के बाहर गिरती हुई ये पानी की मोटी बूंद, हवा में घुली हुई मिट्टी की वो सौंधी सी महक, ऐसे मौसम में अगर दिल किसी को याद न करे तो शिकायत बारिश को भी होगी और इस दिल को भी है ना। यादों की बौछार में भीगना किसे नहीं पसंद, उन सब ने जिन्होंने सिनेमा के पर्दे पर मोहब्बत को खिलते देखा, उन सभी को तो प्यार होने के ख्याल से ही प्यार हुआ। मोहब्बत में वो दीवानगी, प्रेमियों का मासूम सा इकरार और फिर दुनिया से लड़ता वो बेबाक इश्क, आज सब कुछ इस बारिश के नाम होगा। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: Sunny FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
3: Music Cafe चल रहा है 107.1 FM Rainbow पर। बात है सावन की, मोटी मोटी पानी की, बारिश के बूंदों की। और भाई लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है, ये गाना याद ना आए, आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस गाने में जो तड़प है, जो पुरानी यादों का सैलाब है, वो आज भी कानों में पड़ता है तो दिल में एक अजीब सी हलचल मचा देता है। चांदनी फिल्म के इस गाने में एक अजब सा ठहराव है। सच कहूं तो बारिश आसमान से गिरता हुआ पानी नहीं है, ये तो कुदरत का लिखा हुआ एक प्रेम पत्र है जो हर साल हमारे नाम आता है। तो चलिए बीते दिनों की उसी खूबसूरत वक्त में चलते हैं और सुनते हैं ये गीत।

म्यूजिक कैफे चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर, और बस मैं खुद भी आप सभी तरह खो चुकी हूँ इन गानों में। क्या रूहानियत है इन गानों में। और दोस्तों, प्यार की अगर बात करें तो प्यार जब थोड़ा और गहरा, थोड़ा और रूहानी हो जाता है, तब बारिश सिर्फ मिलने का बहाना नहीं, वो जुदाई के दर्द को छुपाने का, आंसुओं का समंदर भी बन जाता है। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। ये जो गाना है तुम बिन का, इस गाने में जो बारिश दिखाई गई वो सिर्फ आसमां से नहीं बरस रही थी, वो प्रेमियों की आंखों से बरस रही थी। और उसी दौर का वो दूसरा पहलू, जब हम तुम फिल्म में सैफ और रानी मुखर्जी बारिश में भीगते हैं और बैकग्राउंड में टाइटल ट्रैक बजता है, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, वो एहसास कि अब बस तुम हो, मैं हूं और ये परस्ता हुआ आसमान है, डिफाइन करता है हर दिल में बसने वाले उस रोमांस को। तो चलिए गाने सुनते हैं, बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो और अभी आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए, किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं
1: जी।
2: तो अजीत जी, क्यों ना इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की
2: जी।
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया
2: जी।
1: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता
1: जी। तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की
2: जी।
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी
2: जी। सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है
2: जी।
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है
1: जी। हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
2: बिल्कुल।
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
2: जी।
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं
2: जी। ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं
2: जी।
1: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
2: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं, तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
2: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओ, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
2: जी।
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
2: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने

0: जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,

0: इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
1: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है, अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please, Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please, Air India announces...
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर

0: हमें लेने नहीं आए थे, याद नहीं? उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
0: हो सकता है कि...
2: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
0: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
2: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं, आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
0: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फजल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
0: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
3: आओ चलो आओ।

0: हॉर्स नो कादिर,
1: तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
2: अब तो पूरा होने वाला है।
3: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
2: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
1: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
3: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
4: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
2: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
4: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
2: हाँ।
4: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
1: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
2: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
1: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
2: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूँ।
1: अच्छा अच्छा।

0: नादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, क्या कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गाँव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियाँ बनाकर रहते हैं

0: तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
1: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाए।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
1: हाँ, बिल्कुल वैसी।
2: कमाल है
1: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
2: वाह।
1: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
1: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
2: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
2: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
1: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
0: हाँ।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्मचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड है। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरो के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरो की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे, जिन्हें मम्मी कहते हैं। मम्मी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है। इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, मम्मी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की मम्मी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
2: ओ,
1: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सिकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
0: तो फिर चलिए।
2: हाँ तो आओ, चलो आओ। कादिर आओ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेकाबिल, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। मैं पूछकर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है।

0: आदिल, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
2: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
0: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
0: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। हाँ। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
2: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
0: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
2: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
2: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: अभी आप सुनेंगे छत्रपति संभाजी नगर से इस घंटे के दोपहर के समाचार।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और FM पर आकाशवाणी मुंबई केंद्र का 107.1 MHz पर FM रेनबो। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। आपके दिल की बातों संग बजेंगे आपके मनपसंद गाने, हम है ना, पूरी करेंगे आपकी फरमाइशें 107.1 FM रेनबो पर हिट एंड हॉट में। मैं हूं वैशाली और इस घंटे भी आप सभी के साथ बनी रहूंगी। मेरी सबसे पहली बात हुई अयाज चौधरी इनसे और इन्होंने कहा कि वाकई जो ये बातें हैं ये सच है कि दिल वाकई दुखता है, टूटता है जब समझ में आता है कि कोई अपने मतलब से, कोई अपनी गरज से हमसे जुड़ा था और फिर जो है दिल ये नहीं चाहता कि भाई फिर से किसी से आसानी से जुड़े। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सच्चे और अच्छे लोग हैं इस दुनिया में और बिल्कुल वो हमें मिलेंगे ही। बस ये कभी कभी कुछ चीज़ें होती है वो हमें थोड़ा सा वीक कर देती है, थोड़ा सा हमें बुरा महसूस होता है, लेकिन यस, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि उम्मीद हमेशा कायम है, जिंदा है, तो इसलिए उम्मीद का सहारा जो है लेना ही चाहिए और इसी तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कितना भी कुछ भी लगे वगैरह हमें अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अयाज जी। और फिर मेरी बात हुई पंकज मोहड़ इनसे और इनका मैसेज भी हमें आया है, वो क्या कहते हैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी। और हमें मैसेज आया अशोक पाटिल और राजेश मोरे इनका वर्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने हुए हैं, एंजॉय कर रहे, जुड़े हुए हैं। महेश बोरा जी अजमेर राजस्थान से भी हमें मैसेज करते हैं कि वो जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं और भी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, हमें लिख कर भेजी हैं। डॉक्टर अंजू अंधेरी ईस्ट से हमसे जुड़ी हैं और इन्होंने लिखा है

है कि बहुत अच्छा लगा मुझे ये सारी चीज़ें, सारी बातें जानकर। लिखती हैं कि मैं बहुत नसीब वाली रही, मेरे दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे अपने सबसे मुश्किल वक्त में हेल्प किया, डॉक्टर दादलानी और उषा सदवानी, वो फार्मासिस्ट हैं। और लिखती है, दोनों मेरे साथ काम करती थी और मैं सच में लकी हूँ। वाह क्या बात है, अच्छे दोस्त होना, अच्छे दोस्त मिलना, ये सच में मैं कहूँगी इसके लिए गुड लक लगता ही है, क्योंकि ऐसे लोग हमें मिलते हैं। अगर गलत से मिल जाते तो क्या होता। हमें पंकज मोहर जी ने यहाँ पर कई सारी बातें लिख भेजी हैं और ये लिखते हैं कि आजकल की दुनिया में सच्चे और अच्छे रिश्ते की तलाश हम सभी को है, लेकिन अच्छे रिश्ते और दोस्त मिलना बहुत ज़रूरी भी है, मुश्किल भी है। एक अच्छा दोस्त जिस पर पूरा विश्वास कर सके, और बाकी भरोसे की बात होती है कि कोई हमें धोखा ना दे, ये हमेशा लगता रहता है। और फिर और भी चीज़ें इन्होंने लिखी है सोशल मीडिया पर कि भरोसा नहीं कर सकते हैं, अगर उस पर, अगर वही बुनियाद हो चीज़ों की तो उस पर पूरा भरोसा नहीं होता। फिर आगे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। साथ ही साथ ये लिखते हैं कि असली रिश्तों में बहुत सारी खूबियां होती है, जो इंसान आपका है वो हमेशा ही आपको साथ देगा आपका और आपके साथ रहेगा। झूठे रिश्ते वाले जुड़े नहीं रहेंगे, सच्चा इंसान होगा वही आपके साथ बना रहेगा। और आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। ये साथ में लिखते हैं जो गाने ये सुनना चाहते हैं, विश्व चॉकलेट दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, धन्यवाद जी आपका। और अभी इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, मैं अयाज चौधरी इनका गाना हम तेरे बिन, पंकज मोहर इनका गाना है नाजनी सुनो ना, और फिर जो है दीपा पालकर इनका गाना, ये मैं प्ले करने वाली हूँ। उनका मैसेज मैं थोड़ी देर बाद आप सभी को सुनवाऊंगी। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। हिट एंड हॉट चल रहा है, आपकी फरमाइशें आपकी बातें हम जो है साझा कर रहे हैं, आपकी बातें आपकी फरमाइशों के साथ। दीपा पालकर जी का मुझे मैसेज आया और इन्होंने कई सारी बातें लिखी कि बचपन होता है तभी हम जो है हमारे

दादा दादी नाना नानी यानी ग्रैंड पेरेंट्स और माता पिता भाई बहन और रिश्तेदार दोस्त छोटे बच्चे हमारे आसपास के टीचर्स सभी से प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए और दूसरों को ज़रूर देना है गिफ्ट, लेकिन कभी खुद को भी गिफ्ट देना चाहिए। वाह क्या बात है, वेरी नाइस, अच्छा लगा जानकर आपके ये विचार। और हमें मैसेज और भी लोगों का आया है, विजय महोबिया और इनके परिवार से हमें खंडवा मध्य प्रदेश से मैसेज आया है, ये सुनना चाहते गाना दिल की आवाज़। तो दीपा पालकर जी का गाना वादा रहा सनम मैंने अभी अभी प्ले किया, तो अब जो है विजय महोबिया जी की फरमाइश जो है दिल की आवाज़ भी सुन, ये गाना मैं प्ले करने वाली हूँ। साथ ही साथ ये रेशमी जुल्फें इस गाने की भी फरमाइश आई है, मैं वही देख रही हूँ ये किनकी है। हाँ, संदीप मक्कड़ जी और उनके परिवार का मैसेज आया है हमें और ये गाना सुनना चाहते हैं। धनंजय हमें मैसेज करते हैं नवी मुंबई से, सुन रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। ईरा और अश्विन शाहबाज का भी हमें मैसेज आया है कि ये इंजॉय कर रहे शो को। राजेंद्र परमार जी भी लिखते हैं कि शो को इंजॉय कर रहे हैं और कहते हैं इतनी बारिश की वजह से मुझे भी आज छुट्टी मिली है, तो मैंने लिखा इनसे कि इनको कि आप इंजॉय कीजिएगा ये छुट्टी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि मिलती है, बस बशर्ते आपको उस छुट्टी को है ना रिप्लेस ना करना पड़े किसी और छुट्टी से, यानी किसी और छुट्टी वाले दिन अगर आपको काम करके वो भरना पड़े तो दिन भरना पड़े तो फिर रोना निकल जाता है। बस ये ना हो किसी के साथ आपकी जो छुट्टी है वो एक एडिशनल छुट्टी रहे, यही मैं उम्मीद करती हूँ। और हमें मैसेज आया है प्रकाश शिंदे जी का भी और ये हमें लिखते हैं कि आज ही के दिन जो है पिछले साल भी बात हुई थी और इन्होंने गाने की फरमाइश की थी जो बिच्छू फिल्म की थी, और कई सारी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें प्रकाश शिंदे जी ने हमारे साथ साझा की है। तो अब जो है क्योंकि समय बहुत कम है और मैं इनका मैसेज ढूंढ रही हूँ, आप सभी श्रोता इतना प्यार करते हैं कि मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है, यहाँ पर भी बाढ़ आती है लेकिन मैसेजेस की, तो इसलिए मैसेजेस ऊपर नीचे हो जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की बातें लिखी हैं, ये लिखते हैं कि आज जो है लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार साहब का स्मृति दिन है तो विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मशहूर गायक कैलाश खेर जी के जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ बिजू फिल्म की रिलीज ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और लिखते हैं सावन की बरसती बूंदों में कोई पैगाम छुपा है, आपकी यादों का पूरा एक जहां छुपा है, यूं तो भीग जाती है सूखी जमीन पल भर में पर इन बूंदों में मेरे दिल का अरमां छुपा है। ये सावन की बूंदें जो जमीन पर गिरती हैं हवाओं के साथ मिलकर कुछ बातें करती हैं, मिटा देती हैं तपस्या सतियों की पल भर में, ये बूंदें आसमां से उतर कर मोहब्बत बिखेरती है। वाह क्या बात है। और लिखते हैं कि सच्चे रिश्ते खून के नहीं बल्कि एहसास भरोसे और निस्वार्थ प्रेम के होते हैं, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब एक सच्चा रिश्ता ही इंसान की ताकत बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यूं ही बने रहिए और प्रेम करते रहिए आपके अपने FM रेनबो को। और तो चलिए इस बरसाती मौसम में कुछ बहुत ही प्यारे गाने हो जाए, बने रहें सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स, और अभी दिल की आवाज़ भी सुन।

0: स्पेननं 2010 फिफा विश्वचषक जिंकला होता, त्यानंतर प्रथमच स्पेन उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचला आहे. अमेरिकेवर 3-4 गोलनं विजय मिळवणाऱ्या बेल्जियमबरोबर स्पेनची उपांत्यपूर्व फेरीतली लढत असेल. इंग्लंडनं मेक्सिकोवर 3-2 असा विजय मिळवून उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे. 5 वेळा विजेतेपद पटकावणाऱ्या ब्राझीलला नॉर्वेकडून पराभव पत्करावा लागला. आता उपांत्यपूर्व फेरीत इंग्लंड विरुद्ध नॉर्वे असा सामना रंगेल. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. भारत आणि इंडोनेशिया दरम्यान संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि शिक्षण अशा विविध क्षेत्रातल्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या. इंडोनेशियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान बिंतांग आदिपूर्णा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना बहाल. अहमदाबाद साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात 38 जणांना फाशी तर इतर 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा विशेष न्यायालयाचा निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयात कायम. आणि मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावर मिसिंग लिंकमध्ये निर्माण झालेल्या समस्येची कारणं विधान परिषदेत मांडण्याचं राज्य सरकारचं आश्वासन. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया 3 आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो और हिट एंड हॉट जारी है. अब आप सभी की फरमाइशें, जो बची हुई फरमाइश है वो मैं प्ले करूंगी. आप सभी के प्यार के लिए, मैसेजेस और कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. अगर आप में से कोई हमारे नए श्रोता हैं और नहीं जानते तो बता दूं, व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए हमारा नंबर है 8657-66-1071 और लैंडलाइन पर फोन लगाने के लिए कॉल पर हमारा नंबर है 4515-4132. दूसरा नंबर है 4515-4133. और अगर आप मैसेज कोई भी ईमेल के जरिए भेजना चाहते हैं तो myfmrainbow@gmail.com पर भेज सकते हैं. तो ये रहे सारे डिटेल्स. और अभी जो गाने मैंने बताए थे मैं प्ले करने वाली हूँ, बस उतने ही गाने प्ले हो पाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं सिर्फ 8-9 गानों की गुंजाइश होती है हिट एंड हॉट में. तो अब देखिए, जो मैं गाना प्ले करने वाली हूँ ये है प्यार हो ना जाए बिच्छू से, जो प्रकाश ने इनकी फरमाइश थी कि उन्होंने कहा, जो मैसेज भेजा है कि आज के दिन ये रिलीज हुई थी. और गुलाब गायकवाड़ हमें संगमनेर से मैसेज करते हैं, खलनायक के गाने की फरमाइश करते हैं. वो गाना अभी अवेलेबल नहीं है, तो खलनायक का दूसरा गाना मैं इनके लिए प्ले करने वाली हूँ, जो है ए साहिब ये ठीक नहीं. और संजय दर्शन जी भी हमें मैसेज करते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें इन्होंने लिखी हैं और दिल अपना बिल्कुल यहाँ पर उन्होंने, मैं कहती हूँ कि रख दिया है सामने हमारे. तो क्या लिखते हैं ये आपको मैं बहुत जल्द बताऊंगी. बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है. दिग्दर्शन और कविता भी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं. कोशिश करूंगी कि इनका गाना प्ले हो सके. और अभी मैं ढूंढ रही हूँ इनका मैसेज, संजय दर्शन जी का. और तब तक आप सभी को बता दूं कि दीपाली शिरोडकर जी ने भी हमें मैसेज किया था कि एक गाना उन्होंने जिसकी फरमाइश भेजी है, वो गाना जो है ये लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्ले नहीं हो पाता आपके लिए. उन्होंने लिखा है कि मैं हमेशा फरमाइश, यानी ये गाना सुनने नहीं मिलता, ऐसा इन्होंने लिखा है. तो वो गाना शायद बहुत ज़्यादा पुराना होगा या अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, इसलिए. और मैं संजय दर्शन जी का ही मैसेज ढूंढ रही हूँ. बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लिखी है. इन्होंने लिखा है कि कहाँ गया है, कहाँ गए वो लोग, अच्छा कहाँ गए वो लोग जो जन्मों जन्म का साथ देते थे. आजकल भटके हुए लोग ज़्यादा है और उसे कोई संबंध का कोई सम्मान नहीं होता. आपके रिश्ता, आपका रिश्ता, लिखते हैं, आपको रिश्ता नहीं रखना हो तो ना बोलना सीखो. खामखा दूसरों की जिंदगी में मत खेल, उससे मत खेलो. और मारना, बेवफाई करना मानो फैशन हो गया है, आए दिन केसेस ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल. और आपको जब भी लगे हम गलत जगह आ गए हैं, तो गलत व्यक्ति से जुड़ गए हैं, तो बस बात करके यू टर्न

ले लो, उससे दो जिंदगी नहीं दोनों परिवार भी बच जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने, वाह। और बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, लिखते हैं, जिस हाथ में कल तक मेहंदी थी, जिसने जन जन की कस्में ली, उसी हाथ ने आज वो खंजर थामा, जिसने बरसों का विश्वास उजाड़ दिया। वो प्यार जो कभी जीने की वजह थी, वो आज एक खौफनाक मंजर बन गया। जिस हम सफर के साथ चलना था उम्र भर, वही राह का सबसे बड़ा पत्थर बन गया। धोखा लालच या था कोई गहरा राज, जिसने ममता और प्रेम का बदला मिजाज। एक हंसता हुआ घर पल में शमशान हुआ, जब अपनों को ही हाथों अपने के ही हाथों नुकसान हुआ। कानून की बेड़ियां अब हाथों में होंगी, पर जो रूह कांप उठी उसका क्या। रिश्तों के इस बदलते और कड़वे दौर में खो गया है सच्चा प्यार और वफा का पता। वाह क्या बात है। और लिखते हैं कि ओहो हो, भूस्खलन हो गया और हमारे मैसेज तीन में से एक। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, अभी तो हमने पढ़ लिया आपके मैसेजेस, तो बने रहिए। अब देखिए, क्योंकि अभी तक 15 लोगों के मैसेजेस हम पढ़ चुके हैं और वक्त की कमी है, आप सभी जानते हैं, फिर भी आप में से हमारे 15-16 श्रोताओं के मैसेजेस हमने पढ़े हैं यहाँ पर, तो आप सभी बने रहें। और भी श्रोताओं के मैसेजेस हैं, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो म्यूजिक कैफे था और आप सभी ने उसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी, आपने पसंद किए वो गाने और ऐसे ही गानों की फरमाइश आ रही है। तो अभी मैं प्ले करने वाली हूँ भीगी भीगी रातों में, फिरोज गनपोरिया, इनकी फरमाइश है।

साथ ही साथ ये रेशमी जुल्फे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये दो ही गाने अब प्ले हो पाएंगे इसकी गुंजाइश है। और ये रेशमी जुल्फे जैसे मैंने आपको बताया था, संदीप मक्कड़ जी और उनके परिवार ने इसकी फरमाइश भेजी है। हमें मैसेज आया है राम प्रजापति जी का भी और कई सारे हमारे श्रोताओं का, तो एक नज़र हमारे श्रोताओं के नामों की तरफ। उससे पहले फिरोज जी हमें लिखते हैं, आज के ज़माने में प्यार का सच्चा रिश्ता मिलना बहुत ही मुश्किल है, किस्मत वालों को ही मिलता है। वाह, ये भी बात सही है। और अब तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को किस्मत पर ही छोड़ना पड़ेगा। हमें यहाँ पर कई सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं और यहाँ पर प्रगति पाटिल जी भी हमसे जुड़ी हैं। और बाकी के श्रोताओं में जो है, प्रणव शिंदे हैं, अभिजीत गवाणकर है, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली हैं, अजय साखरे जी इंदौर से हैं, अनिल कांबड़े हिंगोली से, शुभदा जी भी बनी हुई है, हितेंद्र दास हमारे साथ बने हुए हैं, अलीबाग से हमसे जुड़ी हैं भक्ति पाटिल। और अभी मुझे, मैं देख रही हूँ मैसेजेस जिनके हैं, जय राकेश पाटिल अलीबाग रायगढ़ से। और हमें मैसेज आया है ओमकार काटकर का पंढरपुर से, रघुनाथ खनुकर कोल्हापुर से, यहाँ पर राकेश माथुर जी भी हमसे बने हुए हैं पुणे से, और यहाँ पर नई दिल्ली से हमारे साथ बने हैं गुरमीत सिंह मीता। और भी लोगों के मैसेजेस हैं बहुत सारे। यहाँ पर सुदर्शन शाह और उनका पूरा परिवार बना हुआ है। प्रमोद चिंचोलकर जी का हमें मैसेज आया है, शुभलक्ष्मी मस्तकर जी का, स्वर्ण सिंह इनका भी हमें मैसेज आया है। और ये करते हैं मैसेज हमें लोहगढ़ गांव से, मैसेज पंजाब से। और आगे और भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, मंगेश जोशी जी रोहा रायगढ़ से, चेतन कुमार गया बिहार से, संदीप कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, और यहाँ पर विजेंद्र घाटोल जी भी अकोला से बने हुए हैं। तो ये सारे हमारे तमाम श्रोता यहाँ पर जुड़े हैं, बने हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही अपना प्रेम देते रहिए आपके अपने एफएम रेनबो को। मैं हूँ वैशाली, मुझे दीजिए इजाज़त। अभी एक ही गाना प्ले हो पाएगा और मैं आप सभी के लिए ये रेशमी जुल्फें प्ले कर रही हूँ, क्योंकि ये मैसेज जब पहले आया था, तो फिरोज जी आपकी फरमाइश बाद में कभी बिल्कुल प्ले करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं वक्त की कमी है। तो मैं आपसे मिलूंगी भाई आने वाले इस महीने के पता नहीं कौन से दिन, यानी इसी महीने के। तो बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

ठीक 2 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित होने वाले समाचार मिड डे न्यूज़। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो।

0: take on hosts England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as the newskeeper Shreyas Iyer is yet to register a win under his captaincy. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. MOUs exchanged in several areas including critical minerals, technology, agriculture and maritime security. Prime Minister Modi conferred Indonesia's highest honour, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, in Jakarta. Gujarat High Court upholds death sentence for 38 accused and life term for 11 persons in 2008 Ahmedabad serial blast case. And southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 3 days. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया के

0: भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार ते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत

0: परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
2: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
3: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज PRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नाशिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

गायक चंद्रावरती डाग कशाचा काला काला राही गा छाप सशाचा।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई। 5:02:36 हो चुके हैं और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर कार्यक्रम होगा लव यू जिंदगी, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। जान तुम पर ही दिया करते हैं, नाम तुम्हारा ही लिया करते हैं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और दोस्तों, वैसे भी मुंबई का मिजाज बहुत मस्ती वाला है, बल्कि इतनी ज़्यादा मस्ती हो गई बरसात की वजह से कि अब लोग कह रहे हैं कि बरसात रुकनी चाहिए। दोस्तों, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि ऐसा लगता है कि भगवान ने अपने सारे नलके खोल दिए हैं और भगवान उन्हें बंद करना भूल गए हैं, इसलिए बरसात रुकी नहीं रही है। एनीवे, चलिए, बरसात तो होनी भी चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में अगर गैप मिलता रहे, इंटरवल आता रहे तो अच्छा रहता है। तो इसी के साथ इस स्लॉट का आगाज़ करते हैं और थोड़ा सा पागलपन करते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं प्यार में। चलिए, पहला गीत।

जी हाँ, मुंबई सिटी 5:10 हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है लव यू जिंदगी, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। तो लव यू जिंदगी के हिसाब से कुछ चर्चा करते हैं। समय चलता रहता है और इंसान की ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। जी हाँ, समय के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ यादें हमेशा हमारी ज़िंदगी में खास रहती हैं। आज इसी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, बचपन की पहली साइकिल। जी हाँ, जब बचपन में हमें पहली साइकिल मिली थी तो वो दिन किस तरह का था, कितना एक्साइटमेंट था। साइकिल चलाना नहीं आता था, उसका हैंडल ठीक से संभाल नहीं सकते थे, ये नहीं पता था कि इस पर कैसे बैठना है, क्या करना है, लेकिन वो दिन कितना खास हो जाता है। तो बचपन की पहली साइकिल की कोई याद या साइकिल का कोई किस्सा या साइकिल चलाने के चक्कर में कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, या स्कूल, पहला स्कूल, जी हाँ, या स्कूल का पहला दिन, या स्कूल की कोई ऐसी याद, या स्कूल के किसी टीचर से जुड़ा कोई किस्सा, वाकया, टीचर ने कुछ ऐसा कहा कि जो हमेशा हमें याद रहा, या स्कूल का कोई खास दोस्त, या स्कूल में कोई ट्रॉफी मिली, कोई इनाम मिला, और वो ट्रॉफी, वो इनाम हमें ज़िंदगी भर खास होने का एहसास दिलाता रहा, या स्कूल में हमने कुछ उल्टा पुल्टा किया और ख़ास पनिशमेंट मिली, और वो पनिशमेंट बहुत ख़ास बन गई क्योंकि उस पनिशमेंट की वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया, और वो पनिशमेंट हमें आज भी याद है।

तो कोई भी स्कूल की बात, बचपन की बात, साइकिल की यादें या कोई भी पहली ऐसी याद, पहला अनुभव है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं रविन बहुत ही बेकरारी के साथ आपके संदेशों का इंतज़ार कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।

जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी और आपका अपना चैनल एफएम रेनबो। तो बात कर रहे थे बचपन की और बचपन की पहली कुछ यादें, जैसे पहली साइकिल। अक्सर हम सोसाइटी में देखते हैं कि छोटे बच्चे साइकिल्स चलाते रहते हैं। किसी के पास लाल रंग की, हरे कलर की, पीली, नीली, तरह तरह की साइकिल्स होती हैं। और आज तो बहुत सारे मॉडल्स आ गए हैं, तरह तरह के मॉडल्स। उनमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं, बेल्ट्स होती हैं और पीछे बॉक्स होता है। और कुछ ऐसी साइकिल हमने भी अपने बचपन में चलाई थी, लेकिन तब शायद ऐसी साइकिल्स नहीं थी जैसी आज हैं। और उस साइकिल को लेकर हमारे अंदर कितना एक्साइटमेंट था, क्योंकि उससे पहले हमने सिर्फ दूसरों को साइकिल चलाते हुए देखा था। और जब साइकिल मिली तो साइकिल चलाना सीखना, बार बार गिर जाना, हमारे साथ कोई हमारा बड़ा सहायता करता है कि हम ठीक से साइकिल चलाएं और साइकिल से ना गिरें। और शायद यहीं से ज़िंदगी का पहला सबक मिलता है, पहला लेसन मिलता है कि जैसे हम साइकिल से गिरते हैं, उठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और कोई हमारा अपना, हमारा बड़ा हमारा साथ देता है। शायद ये ज़िंदगी का पहला सबक है, पहला लेसन है। हमारी ज़िंदगी भी ठीक इसी तरह चलती है। हम आगे बढ़ते हैं, कभी कमज़ोर पड़ते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी हौसला टूट जाता है और फिर उठकर चलने की कोशिश करते हैं। और उस वक्त हमारे साथ हमारी फैमिली के लोग सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। यानी साइकिल चलाना सीखना ज़िंदगी जीने की तैयारी है। ज़िंदगी को कैसे जिया जाए ये सीखने का एक ज़रिया है, जो बचपन में हमें पता चल जाता है, मिल जाता है। और शायद हमें पता भी नहीं चलता कि किस तरह से हमने उस चीज़ को सीखा, समझा, जाना और जिया। तो अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

जी हाँ, मुंबई सिटी 5:29 हो चुके हैं। कार्यक्रम चल रहा है लव यू जिंदगी और मैं आपके साथ आपका अपना जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। मानखुर से प्रकाश शिंदे जी ने बहुत ही खूबसूरत संदेश भेजा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि मेरा पूरा बचपन गांव में बीता है और मेरे घर से स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पर था और मैं पैदल चलकर जाया करता था। इसके बाद जब मुझे आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांव के स्कूल में एडमिशन दिलाया गया और ये स्कूल 7 किलोमीटर दूर था, तब पिताजी ने मुझे नई साइकिल खरीद कर दी। दोस्तों गौर से सुनिएगा उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जब मुझे मेरे पिताजी ने नई साइकिल खरीद कर दी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे हवाई जहाज मिल गया है। जी हाँ, और हवाई जहाज़ मिलने की जो फीलिंग हो सकती है आप समझ सकते हैं कि प्रकाश शिंदे जी उस समय क्या महसूस कर रहे होंगे। उनका दिल करता होगा कि साइकिल पर चढ़ें और आसमान में उड़ जाएं। तो वो लिखते हैं कि वो भी क्या दिन थे, तब के तेवर याद आते हैं और मैं हर एक को दिखाता था कि देखो मेरे पापा ने मुझे नई साइकिल खरीद कर दी है और ख़ुद को किसी हीरो से कम नहीं समझ रहा था। एनीवे, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला खूबसूरत गीत, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।

0: कभी कभी।
1: तो गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, आज हम साइकिल से हमारी जो मोहब्बत हुई थी, पहली मोहब्बत, उसी की चर्चा कर रहे हैं। और राकेश माथुर जी पुणे से लिखते हैं कि जब मुझे पहली बार साइकिल मिली थी तो जैसे मुझे पंख लग गए थे। साइकिल को बड़े प्यार से साफ करना, सुबह साइकिल से ही स्कूल जाना, शाम को दोस्तों से मिलने जाना, और हम थोड़ा इतराते थे, घर का काम हो, बाज़ार का काम हो, कुछ भी हो, बस बहाने से साइकिल लेकर निकलने का मौका ढूंढते रहते थे। सच में वो कैसे दिन थे। और उस वक्त राकेश जी एमपी के शहर विदिशा में थे, यानी विदिशा में उनका बचपन बीता। तो दोस्तों, अगर बचपन की कोई याद, पहली साइकिल, स्कूल का पहला दिन, या कोई टीचर, या टीचर की मार या डांट, या कोई स्कूल में मिला इनाम, या स्कूल में मिली कोई सजा जो हमेशा याद रही और आज भी याद है, तो व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका रविन आपके संदेशों का मोहब्बत के साथ इंतज़ार कर रहा है। अगला गीत किशोरदा की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गीत है। सिर्फ सुनना नहीं है, महसूस करना है।

शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो, सिमटी सी शर्माई।

जी हाँ, मुंबई सिटी अजमेर से लाली झा लिखती हैं कि मुझे बचपन में मेरे पापा ने साइकिल चलाना सिखाया और वो मेरे पीछे बैठ जाया करते थे थोड़ा थोड़ा, और कॉलेज टाइम में बाद में मैं अपने आप साइकिल चलाने लगी। लेकिन जब मैंने साइकिल चलाना थोड़ा थोड़ा सीख लिया तो एक दिन मेरे सामने गाय आ गई और मैं गाय से काफ़ी दूर थी, लेकिन मैं गाय को सामने देख कर ही डर गई और साइकिल से अपने आप गिर गई। तो अक्सर लाली जी ऐसा होता है कि जब इंसान साइकिल चलाना नया नया सीखता है तो बिना किसी वजह भी गिर जाता है, थोड़ा सा दिमाग में डर होता है, घबराहट होती है। एनीवे, बहुत ही खूबसूरत संदेश आपने दिया। और फिरोज सिंगनपुरिया जी ने भी लिखा है कि बचपन में तीन पहिए की साइकिल मिली थी, फिर भी उससे हम गिर जाया करते थे। वाकई बहुत सही कहा आपने, शायद साइकिल से गिरना, फिर उठना, फिर साइकिल चलाना सीखना ज़िंदगी की एक, कह सकते हैं कि तैयारी है एक तरह से, कि हम ज़िंदगी की तैयारी करते हैं। और चेंबूर से काजल कक्कड़ ने लिखा है कि उन्होंने स्कूल में फेयरवेल के टाइम पर फिल्म कटी पतंग का एक गाना गाया था और वो गाना लोगों को बहुत अच्छा लगा था और उन्हें इसके लिए फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत यादें आप सभी लोगों ने हमारे साथ शेयर की हैं। और अगला गीत मैं कटी पतंग से ही प्ले कर रहा हूँ, आवाज़ है मुकेश की।

जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी और आपका अपना चैनल एफएम रेनबो। एक और संदेश में लेना चाहूंगा, संजय दर्शन लिखते हैं कि साइकिल से शून्य प्रदूषण होता है। ये मात्र एक ऐसा वाहन है जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। और वो लिखते हैं कि जब हमने साइकिल चलाना सीखा था तो पीछे से पापा या बड़े भाई साइकिल पकड़ कर दौड़ते थे और फिर चुपके से धीरे से साइकिल छोड़ देते थे और हम अपने आप चलाने लगते थे। वो बड़ा ही रोमांचक अनुभव था। और वो लिखते हैं कि मैंने 2017 तक साइकिल चलाई है और साइकिल से एक तरह से एनर्जी मिलती है, इंसान फिट रहता है, अच्छा रहता है। और साइकिल चलाने में एक खास बात यह है कि कहीं ना कहीं अपने अंदर हम एक तरह की आज़ादी का अनुभव भी महसूस करते हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है। तो दोस्तों, 6:01 हो चुका है और इस स्लॉट का आखिरी गीत आपकी नज़र करता हूँ, फिल्म प्रेम रोग से बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई। 6:15 और 50 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं FM रेनबो यानी 107.1 MHz पर। कार्यक्रम होगा अंदाजे बयां और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। तो चलिए इस महफिल का आगाज करते हैं लता जी की आवाज में मासूम से एक मासूम सी खूबसूरत सी गजल।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने कैलाश खेर जी का गाया हुआ प्यारा सा गीत सुना और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज कैलाश खेर जी का हैप्पी हैप्पी बर्थडे है। सो डियर कैलाश जी, आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 7 से 10 होगा रिक्वेस्ट आवर यानी हम तुम, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज दिलीप साहब की पुण्यतिथि है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि रिक्वेस्ट आवर में आप दिलीप साहब की किसी भी फिल्म के गाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे तो अभी से करना शुरू कर दें, यानी 7:10 से लेकर 8 बजे तक हम दिलीप साहब की फिल्मों के गानों की फरमाइश पूरी करेंगे। तो सुनते रहिए FM रेनबो। अगला गीत कैलाश खेर की आवाज़ में, यानी उनका सूफियाना अंदाज़।

कार्यक्रम अंदाज़े बयां चल रहा है, चंद अल्फाज मेरे दिल का शायर कहता है। हम जी रहे हैं जान तुम्हारे बगैर भी, हर दिन गुजर रहा है गुजारे बगैर भी। सबके लिए किनारे पे होता नहीं कोई, कुछ लोग डूबते हैं पुकारे बगैर भी।

जीते बगैर जीतने वालों के दौर में, जीते बगैर जीतने वालों के दौर में कुछ लोग हार जाते हैं हारे बगैर भी। ऐसे भी जो डूब गए दिल के साथ साथ दरिया में अपनी नाव उतारे बगैर भी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज़ है अदनान सामी की, इश्क होता नहीं सभी के लिए। बहुत ही खूबसूरत गज़ल।

जी हाँ दोस्तों, चंद अल्फाज में आपको सुनाना चाहूँगा बरसात के बारे में ही है। और जैसी बरसात मुंबई में इस वक्त हो रही है तो उस पर तो बिल्कुल एकदम सही फपते हैं ये अल्फाज। दूर तक छाए थे बादल, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। जी हाँ, जैसी बरसात मुंबई में हो रही है उसके हिसाब से एकदम बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं, बहुत ही खूबसूरत शायरी है। तो चलिए सुनते हैं अगली गज़ल भूपेंद्र की आवाज़, जिंदगी को आवाज़ देते हैं।

0: 6:45 और 11 सेकंड हो चुके हैं। मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाजे बयां, आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर FM रेनबो। चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ। चाहत वफा खुलूस की दौलत नहीं रही, चाहत वफा खुलूस की दौलत नहीं रही, अपने ही दिल पे अपनी हुकूमत नहीं रही। रुखसत हुआ तो आंख किसी की भी नम न थी, गौर चाहूंगा, रुखसत हुआ तो आंख किसी की भी नम न थी, क्या अब किसी को मेरी जरूरत नहीं रही। अगला गीत, आवाजें हैं रूना लैला और भूपेंद्र की।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

जी हाँ दोस्तों, 6:57 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां। ये लाजमी नहीं बाहों के दरमियां भी रहें, ये लाजमी नहीं बाहों के दरमियां भी रहें, मेरी दुआ है कि तू खुश रहे जहां भी रहे। यही बहुत है कि नज़रों के सामने है वो शख्स, कहां लिखा है कि वो मुझ पे मेहरबान भी रहे। तू जाते जाते मुझे ऐसा जख्म देता जा कि दर्द भी रहे ता उम्र और तेरे निशान भी रहे। तो गजलों का ये कार्यक्रम आप और हम सुन रहे थे, और गजलों में कितनी शिद्दत होती है, कितनी खूबसूरती होती है, इसे हम सभी अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, आज अभिनय सम्राट दिलीप साहब की पुण्यतिथि है, तो आज अगला स्लॉट जो होगा 7:10 से लेकर 8:00 का, यानी लगभग 50 मिनट हमारे पास होंगे, और ये रिक्वेस्ट आवर होता है। तो इस रिक्वेस्ट आवर में आप दिलीप साहब की किसी भी फिल्म के किसी भी गाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, और इस स्लॉट में हम दिलीप साहब को याद करेंगे और उन्हें कोटि कोटि नमन करेंगे उनकी पुण्यतिथि पर। तो सुनते रहिए FM रेनबो, ठीक 7:00 सुनेंगे आप मराठी।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक मुंबई। 7:11 और 26 सेकंड हो चुके हैं। आप सुनेंगे कार्यक्रम हम तुम, आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो, और मैं आपके साथ आपका आरजे रविंद्र चौहान। और व्हाट्सएप के जरिए आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, तो उसी पर मैं ध्यान दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत सुनना चाहती हैं अजमेर से लाली झा। आवाज़ है रफ़ी साहब की, बहुत ही खूबसूरत गीत।

16 सेकंड हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत और कह सकते हैं कि तलत महमूद साहब की मखमली आवाज़ में ये गीत था, और इस गाने को सुनना चाहते थे ग्रांट रोड से हमारे बापू यानी फिरोज सिंघनपुरिया जी। और अगला गीत सुनना चाहते हैं कांजूर मार्ग से आरती शाह, और इसी गीत की फरमाइश की है अंधेरी से तनुजा शर्मा जी ने। बहुत ही खूबसूरत गीत, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की, और फिल्म का नाम है कोहिनूर, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, आदमी फिल्म का एक गीत रफ़ी साहब की आवाज़ थी और सुनना चाहते थे पूना से राकेश माथुर जी। बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है। और अगला गीत फिल्म गोपी से आवाज़ है रफ़ी साहब की और सुनना चाहते हैं पंकज माहौड़ अमरावती से और प्रकाश शिंदे प्रणव शिंदे मानखुर्द से।

तो गीत संगीत के दीवानों एफएम के चाहने वालों, आज दिलीप साहब की पुण्यतिथि है, तो आज इस कार्यक्रम में हम उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हें कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। तो इस स्लॉट में आज हम दिलीप साहब की फिल्मों के गाने ही सुन रहे हैं, तो आप उन्हीं के गानों की रिक्वेस्ट करें। 7:33 हो चुके हैं और मैं रविन आपके साथ अगला गीत सुनना चाहते हैं। माहिम से दीपा पालकर जी और मुकेश वालिया देहरादून से और चेतन कुमार बिहार से, तीनों की पसंद बिल्कुल एक है, मुगले आजम और प्यार किया तो डरना क्या। शायद ये नहीं डरते हैं तीनों। एनीवे, लता जी की आवाज़।

0: दीवानापन।
1: जी हाँ दोस्तों, ये दीवानापन था दीपाली शिरोडकर का और सुंदरी ठाकुर का उज्जैन से। ये हमारे दोनों लिसनर्स इस गीत को सुनना चाहते थे। और अगला गीत है फिल्म मधुमति से, आवाज़ है मुकेश की और इसकी फरमाइश हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने की है, तो चलिए सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, इतने सुहाने सुहाने गाने होंगे तो मौसम तो अपने आप ही सुहाना हो जाएगा। एनीवे, बहुत ही खूबसूरत गीत था, फिल्म का नाम था मधुमति, आवाज़ थी मुकेश की, और इस गाने को सुनना चाहते थे मीना जी अंधेरी से, शंकराचार्य जी तेलंगाना से, और अजय साखरे जी इंदौर से, और लास्ट बट नॉट लीस्ट संजय दर्शन जी। आप सभी लिसनर्स ने, यानी आप चारों ने इस गाने की फरमाइश की थी। और अगला गीत, फिल्म का नाम है नया दौर और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, बहुत ही खूबसूरत गीत। तो चलिए, आप भी अपनी जुल्फों को थोड़ा सा मुंबई की मस्ती में, मुंबई की बरसात में, मुंबई की हवा में उड़ा लीजिए।

जी हाँ दोस्तों, ये गीत था फिल्म नया दौर से और सुनना चाहते थे दत्ता केदार पंढरपुर से। कार्यक्रम का अगला गीत मधुमती से, आवाज़ है मुकेश की और सुनना चाहते हैं अरविंद कुलकर्णी इचकरंजी से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका जिंदा दिल आरजे रवीन आपसे विदा लेता हूँ। और कार्यक्रम का आखिरी गीत, सारे शहर में आप सा कोई नहीं, वाकई इस दुनिया में दिलीप साहब आपके जैसा कोई भी नहीं है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं सुशील यादव, रेणु यादव और विजेंद्र घाटोल अकोला से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाईयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया

0: सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है, ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना

0: से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
3: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9.

Time to go!

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद ही विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक

सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमरीका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। कभी आपने सोचा है कि किसी गीत की या किसी गजल की पहली धुनी अपनी लगती है कि उसके बाद कुछ कहने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। लगता है जैसे किसी ने दिल की बात हमसे पहले ही समझ ली हो, और शायद इसीलिए अच्छी गजलें कभी पुरानी नहीं पड़ती। हर बार वो एक नया मतलब लेकर आती हैं।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो दिल से दिल तक ताहिर आप लोगों के बीच में है और प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। कभी कभी लगता है कि जिंदगी में हमें किसी बड़ी खुशी की कमी नहीं होती, कमी होती है तो बस उस वक्त की, जब घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जब बातें मुकम्मल होती हैं तो चाय ठंडी हो जाती है, महसूस किया है ना, और शाम जल्दी खत्म होने का अफसोस होता है। आज सब कुछ है लेकिन फुर्सत जैसे कहीं रास्ते में छूट गई हो। शायद इसीलिए कुछ गीत दिल को इतने करीब लगते हैं, क्योंकि वो हमें उन दिनों तक ले जाते हैं जहां जिंदगी तेज नहीं गहरी हुआ करती थी और हर लम्हा जीने की वजह बन जाती थी।

कभी कभी तकलीफ इस बात की नहीं होती कि कोई चला गया, तकलीफ इस बात की होती है कि हमने जिस सच को दिल से माना वो किसी और के लिए शायद उतना अहम था ही नहीं जितना हम सोचते थे। इंसान टूट तब नहीं जाता जब कोई उसे छोड़ देता है, वो तब टूटने लगता है जब उसके भरोसे और उसकी अहमियत कम हो जाती है। फिर भी दिल की एक खूबी है, हर जख्म के बाद भी वो मोहब्बत से नफरत करना नहीं सीखता।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नए तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो, मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चला है रंगे महफिल।

शफक कहते हैं किरणों को रेस, और धनु रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: एफएम रेनबो और मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। जिंदगी में हर मुलाकात लंबी हो ये जरूरी नहीं। कुछ लोग बस कुछ पल के लिए मिलते हैं मगर उनकी बात का असर बहुत देर तक रहता है। इंसान अक्सर वक्त को नहीं उस एहसास को संभाल के रखता है जो किसी मौजूदगी से मिला हो, है ना। कभी सोचा है कि हम सब के पास एक ऐसी बात होती है जो हम किसी से नहीं कहते मगर जब कोई गजल सुनता है तो लगता है जैसे उसमें वही बात लिखी हुई है। बस इसीलिए गजल और दिल का रिश्ता इतना पुराना है। इंतजार भी कुछ ऐसी चीज होती है बहुत लंबा हो जाता है कभी कभी।

कुछ चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं, लेकिन कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसा अच्छे गीत सुनना, गजलें सुनते ही रुक जाना, या किसी खूबसूरत मिसरे को दोबारा सुनने के लिए दिल करना। ये छोटी छोटी बातें ही महफिल को असली रंग देती हैं, महफिल को बनाती हैं। इंसान की जिंदगी में सुकून बहुत महंगा नहीं होता। कभी एक कप चाय, कभी हल्की सी हवा और कभी दो अच्छे अल्फाज ही काफी होते हैं। आज की महफिल शायद इसी छोटे से सुकून का एक बहाना है।

आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी रेनबो पर जीरो आर के सफर में आपके साथ हूं मैं आपकी दोस्त अर्चना। लेकर आई हूं आपके लिए कुछ ऐसे गीत जो इस मौसम के और इस माहौल के लिए बिल्कुल मुफीद साबित हो रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। साथ बने रहिए एफएम रेनबो पर, यूं ही।

की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

ये था कार्यक्रम जीरा और शो। अब रात के ठीक एक बज चुके हैं। पेश है अब तक की प्रमुख न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोगों के लापता होने की खबर है। मौसम विभाग ने वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान जताया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। ये थी इस घंटे की प्रमुख न्यूज हेडलाइंस, ताजा खबरें। आइए सुनते हैं कुछ ही देर में कार्यक्रम सुहानी रात, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: जुड़े आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं इस समय भी और 24 घंटे न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग कोनों से आप अगर जुड़ना चाहते हैं और नहीं जुड़ पाए हैं किसी भी वजह से, तो आप इस ऐप को जल्द से जल्द कर लीजिए डाउनलोड। रात के मध्य रात्रि के कहना चाहिए 1:09 हो चुके हैं और कुछ सेकंड्स भी, और जिस रफ्तार के साथ घड़ी चल रही है हमारे कार्यक्रम भी उसी के साथ साथ चल रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मौसम जो क्या कहना चाहिए, बदली से झांकती जो छोटी छोटी किरणें हैं ना सितारों की, इससे पहले दोपहर में सूरज की, अभी तो यही आँख में चौली जो है वो शुरू हो चुकी है। उत्तर भारत की अगर हम बात करें, उत्तर भारत और मध्य भारत में इस वक्त कहना चाहिए कि मानसून करीब करीब दस्तक दे चुका है और जो बारिश हो रही है वो उसी का पैगाम लेकर आ रही है। बाकी मौसम विभाग ज़्यादा जाने लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो चिलचिलाती हुई गर्मी अभी तक पड़ रही थी, ख़ासतौर से उमस के साथ, उसके बीच ये बादलों से हो रही लुका छिपी अब एक कन्फर्मेशन होनी चाहिए, ताकि दिल्ली समेत नॉर्थ और नॉर्थ सेंट्रल इंडिया के, उत्तर मध्य भारत के जो इलाके हैं, लोग हैं, उन्हें कुछ राहत मिल सके इस चिपचिपाती गर्मी से, नमी से। लेकिन इस सब के बीच हमारा भी ये जो कार्यक्रम है ना, सुहानी रात, ये आपको सुहाने दिनों की तरफ ले के जाता है इसी गर्मी इसी बारिश के बीच से। तो याद के साथ, वाक्यात के साथ, किस्सों कहानियों के साथ अगर वक्त बिताना चाहते हैं तो इस घंटे रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं वादा करता हूँ कि आपको यादों की जो भीगन है ना वो बारिश से भी ज़्यादा सुहानी लगने वाली है। इसी वादे के साथ आगे बढ़ते हैं, आप जुड़े हैं मेरे यानी रजत के साथ प्रोग्राम सुहानी रात में आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1:00 से 2:00 तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।

अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी ची नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम अब अपनी रफ्तार पर है और चलते चलते हम आ चुके हैं अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। हम बता दें कि हमारे साथ रविंद्र कुमार जी जुड़े सिरसा हरियाणा से। उसके अलावा हमारे साथ इसी कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों में से मैं सबके नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बता दूँ, पवन जी जुड़े हमें हमारे साथ सोनभद्र से, उत्तर प्रदेश से। और आपने बहुत सारी कुछ फरमाइशें भी भेजी, कुछ हम पूरी कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते, समय का भी रिस्ट्रिक्शन है और कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से ही तैयार होती है, आप समझ ही सकते हैं। और लेकिन बातें की आपने, अपने भाव हम तक पहुंचाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम सुहानी रात में मेरे साथ, और आप कार्यक्रम जारी है और इसके साथ जुड़े रहें ये ज़रूर हम आपसे कहेंगे। और इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों से जुड़कर हमारे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाते रहें, हमारे जो मित्रता है आपके साथ वो भी जुड़े रहें। फिलहाल कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति ये अगला गीत।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज विभिन्न क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी के मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ होगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोगों के लापता होने की खबर है। मौसम विभाग ने वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। क्रिकेट में आज रात नॉटिंगम के ट्रेड ब्रिज में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया है। ये थे अब तक के रेनबो मुख्य समाचार।

0: से तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन।

दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

तीन बज चुके हैं और वक्त है इस घंटे की प्रमुख खबरों का, उन समाचार हेडलाइंस का जिनका अब वक्त हो चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज विभिन्न क्षेत्रों पर

अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। उन्होंने कहा, इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ होंगे। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोगों के लापता होने की खबर है। मौसम विभाग ने वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और क्रिकेट में आज रात नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया है और ये भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अब तक की सबसे बड़ी हार है। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज के साथ, और मैं हूं आपके साथ रजत।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो,

0: साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

सुबह के 4 बजे हैं, लीजिए पेश है अब तक की ताज़ा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवादी नहीं, विकास मार्ग पर चलता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज विभिन्न क्षेत्रों पर अलनीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोगों के लापता होने की खबर है। मौसम विभाग ने वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और क्रिकेट में आज रात नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए 3रे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। कुछ ही देर में अर्चना लेकर आएंगी सारेगामा। जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।